कली बैठी हैं मैं लेके आसार, एक बारी मिले सजना जिंद अपनी मैं दीती है गवा, एक बारी मिले सजना झूठ अंग साक सब झूठा संसारे, झूठा संसारे रब नू विसार के झूठे नल कीता प्यार वे, झूठे नल कीता प्यार वे रहियां खोटियां ते सच्चियां सुना, एक बारी मिल सजना जिंद अपनी मैं दीती है गवा, एक बारी मिल सजना काल दा निशाना मेरे सिरे उत्ते वजना, सिरे उत्ते वजना कड़े है जड़ा उन्हें एक दिन पजना, एक दिन पजना एक

हर एक मंजर बिना बोले जो तू कहता उसे सुनता ही रहता हूँ। लिखे हैं मन ने बड़े यतन से तेरी महिमा में कुछ नगमे, सुने तुमने भी इस मन से जो तुमने ही लिखाए हैं। लिखे हैं मन ने पहाड़ों से निकल कर जल नदी कहती मेरे संग चल,

है, लिखे जो मन ने बड़े यतन से, तेरी महिमा में कुछ नगमे सुने तुमने भी इस मन से, जो तुमने ही लिखाए हैं, लिखे जो मन ने। ये हरियाली भरी वादी, ये फूलों से

एहसास करो ओ मेरी माँ है कंब दी, जद हवा चलेगी ठंडी तन नो चंब दी, एहसास करो

ऐसे ही तो जरूरी है मीठे वचन, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे।

जिंदगी का सफर ये सुहाना बने, छोड़ दे तू अगर सारे शिकवे गिले। जिंदगी का सफर ये सुहाना बने।

खुश रहे जो सदा उसकी मौज में, दास सच्चा वही तो है भगवान का। खुश रहे जो सदा उसकी मौज में, दास सच्चा वही तो है भगवान का। तू सहारा अगर ना किसी का बना, तो ये जीवन तेरा बस।

बीते पल में याद कराता नहादा विश्वासिक दे गम दे मारू तली दे अंदर डाची कुमी सदरा दे चार चुफेरे ढूंढ जावा सुन मेरी हरदास कदे।

ओ जोरा वार तेरा माता जित्या न जाऊंगा, जोरा वार तेरा माता जित्या न जाऊंगा। ओ बन के दशहरे लाड़ी मौत नू व्याऊंगा, साडा लाड़ी मौत ना त्यार साडी अम्मी नी, अज सानू री जाना शिंगार साडी अम्मी नी, अज सानू री जाना शिंगार। ओ फते सिंह तेरा फते पाऊगा मैदान चो, फते सिंह तेरा फते पाऊगा मैदान चो। ओ कर दू मसाल कैम वखरी जहान चो, खुंडी कर देनी तल

का सफर, आते जाते हुए मुस्कुराना, हंसते गाते दिन बिताना, हाँ जिंदगी ये कहे।

साथ सफर का रूठे ना, रूठे अगर तुम ना लेना। साथ सफर का रूठे ना, रूठे अगर तुम ना लेना। मौका हरगिज ना तू गवाना, हंसते गाते दिन बिताना। हाँ, जिंदगी ये

एक दिन ऐसा आ जाएगा जिस दिन तू चुप हो जाएगा। एक दिन ऐसा आ जाएगा जिस दिन चुप तू हो जाएगा। इस बात को भूल न जाना, हंसते गाते दिन बिताना। हाँ, जिंदगी ये